0: पांडा ओ जिन सालाइजाने टपिक ना नरक सैर फिर नरक कक दुब दी जिनार कक दुकनी मारे नरक सैमानक लाई सकलाई न 0381232623 ओ कक दुकनी मारे ओ कक दुख लाइम सक्रंगी जिन तीन सालाइना जिन चेराइ रकन ताल कग्रमानी अबनी इफेक्ट रकन तीन जिन सालाइने जिन चेराइ रकन फल्स प्रमिसेस मकलाय बरकन कग्रबो आंनी बगे अबहाय फायनाय नन अबहाय पायरे फायनाय आं डाक्टिन फायनाय आं अफ्रो फायनाय गोबां मानो जों प्रमिस खायो जेराय रक माने सानखांखे इं रोनाय रोनाय अबहाय कग्रकजों बरकन कग्रबो गोबां मा जों सिदे सिया दै हायाखेबा जेराय रकन बान्दिनानै बागै हायाखेबा जों सामुंग्रग थांब्रु जेराय रक दङन जों गुबुल गथरों खांखाय रेखथार खांखेबो जों बरकन पद्रपद ताल कग्रै कलां हंखाय आबुनि बेलाय खेन इफेक्ट कटर ओंमानि जों नग आबुनि बाहाय बाहाय इफेक्ट नग होंखाय जों आबुबाय जेराय रकन बरकन जों बरकनि जों जे अख्रा ओङै बरकन नायमानि नायगिनि खालायमानि जोंनि पेरेन्टिं आब' बेलाय खेन हामिया जेराय रकनि साखाव खालायो दे आबुनो कारैबो बरकनि बरक आबुबाय बोखातरि मानिया बोखातरि मानियांग' जोंनो बिलिभ खालायमायांग' जोंनो पैद' जायांग' दिरुग दिरुग जोंनो पैद' जायाङै थांग' दाय दिरुग दिरुग जोंनो डिसअनेस्ट खायो हायखैबा जोंनो बरम रिया ओङै थांग' जोंनो दिरुग दिरुग रेसपेक्ट रिया ओङै थांग' वाइसिया वाइनिया जों बरकनि न प्रमिस खायनाय जोंनि प्रमिसन जों नारायगिया जों प्रमिसन सोबायगे ब्रेक खायगे आफ्रके जों जेराय रक द्रुग द्रुग अख्रा रकन डिसरेसपेक्ट खायो डिसअनेस्ट बरक ओङै थांग' दाय बरकनि बरक एनजाइटि ओंगौ कनफ्युज ओंगौ बरकनि वान सुख मानि ओ बरक आसो बोखाबाय वान सुख मानि हायखेबा मेन्टेलि बरकनि कायसा पिस माया ओङै थांग' मेन्टेलि बरकनि कायसा ट्रमा ओङै थांग' मानसिक अशान्तिहाय मानसिक शान्ति गोरिहाय सुख्रिहाय आराम गोरिहाय अबहाय गायसा जेराय रकनि थानिव' जों नग' आबहाय जेराय रक ओङै थांग' जों बरकन प्रमिस खायै जों बरकन प्रमिसन नारायगिया हांखाय जोंहाबो सिदै सियादै चिकन चिकन प्रमिस जों खालायो दाय आबोनो जों नारायगिया आंगौ जोंहाबो सास्ला ब्रक माइ आंगौ जरा जराव' अबहाय कुनुंग्लाक देवायसेफोर रोफायानो हायखे जों अग्रा रक्त' जोंनि गोबां मा नग नखंनि बारजा दंमानि बागै जों जेराय रकन कग्र फाना फाद्राव ओंखारै थांखांखाय बगै थांगौ हेंखाय जों जेराय रकन कग्रमान आब' जों फुलफिल खायजगियाङै थांगौ जों आब' मुसुंदै खालायाबानो आबाहाय ओङै रक थांगौ बेनि बागै जों जेराय जों पुसिनानै होंखांखाय बेलायखेन मेन्टेलि फिजिकेलि जों बेलायखे देयार ओंनानै नांगौ गुबुन सिजाग नुगजाग हारग' हाक्तरग' जों नग' जेराय पुसिनानै हेंखाखे हायखाबाय बरक नखंग' जेराय खालायनानै हेंखाखे मेन्टेलि फिजिकेलि बरक डाक्टर बै कन्साल्ट खाय बरक देया रोंग' जिनहर हेंखाथ' जों आबा हाया जों दामखे हेंगै थां जों बुमा बुफा हानजानाय रकन' सिस्लाबिया आबनि बागै जेराय पुसि थानि जिनि गिसिसा अबहाय कमिरक जों नुगजागौ फादिगे अबनोतै नोंनो रकन नरकबाय सालायानो नरक बाहायना अबनि थामु थामु इफेक्ट ओङैमान दाय बबाहाय बबाहाय ओङैमान खाख्लायो नरकबो अबनोतै गिसाले सायमाना बुजिना होनायनाय आं खाख्लायो फादि अबनोतै न सालायानो अजराव ककदुग फायसे दंखा नायै नायग्राना ककदुग साब दं हेल' हेल' साबु बंखा आनि खरां न' आं खानाय दंमाहै ओंखा गैसा मैसा जों जालग ओङै फानो मानो ककग्रै नरक गोरोङै नानि जाय दगै दंदि गोरोङै मानानो दाय दिनैनि अ टपिक नदै नरक कक नारगै मानानो हायनो हाय नायानो हेल' हेल'
1: हेल'
0: बेलायखानो फुं काहाम
1: फुं काहाम
0: फुं काहाम सादे दा

रमेश रखाये दादाल गग्रग समाय रग्रबै बरकनो जों जिनि जिनि साक साकनि न इम्पर्टेन्ट बरकनि थानि जों खाखिलाय मानि खालायो ओंखाय जों दरक दरक बरकनि थानि दा मानियांनाय बरक बो दरक दरक ननतैनाय डिसपइन्टेड ओंनाय गा आरो ओंखाय जों बरकनि बोखानो सोबायमा खालायो बरकनि बोखानो सोबाय बरक बो बोखाबाय खांखाय बरक बो खायसा एनजाइटि ओ खालायो बरक बो खायसा डिसहनेस्ट गो हेके बो बरक बो बरक खाम ओङै भाषा नानि ए कग्रै कक नारा गया माबा तां ना दं अख्रा रक्से कग्रै कक नारा गया ताताल साव बाजि साव जेंग्रा साव आंबो सायमानो बाहाय खायसा ओ हामिया सोरोंमुं हामिया कक ताताल कक अबाय सोरोंमुं वान सुकमुं बरकनि थानि फाय थां गे जों बरकनो बरकनि थानि जों बरकनो बुजकनानि आबो चिनि गायसा गोरैङै थाङो जों बुजकफानो बरकनो फोरोंफानो आबो बरकताय एक्सेप्ट खाया हे बहायनि साय दं बाबहायनि साय दं आमाहायनि साय दं बहायनो आबो खेसे खेसे अबहाय रक जों जारायरक बाय होनजागौ जों साय दंफानो बरकनो फोरोङै दंफानो बरक अ फोरोंमु रकनो इया जागै नाया आबाहाय ओंगौ आबोनो जों जारायरकनो ताताल प्रमिस रक खालायनानै गग्रै ताताल सोमाय रक बरकनो जों रोनानि गग्रै जों जे मानसाक बरकनो गुबै गक सानानै जों बरकनो फोरोंनानै नांगौ

0: रोकले सामू ख्राइनानी सकांग आ सामूनी कहाम हामियावान सुगो फिया बुधवा बड़ रोकले सामू ख्राइमानी यागुलोसे आबनवान सुगो हायुंग खरकसा बड़कनी बागै जे साफानो मान्या हिनमा गोरै तुमुंग ब साग साग बाय जायदगै ख्राइगा हिनगे आसिक जरा क कहामो महात्मा गान्धी सालंमा कक रक खानाबायगा
1: आव फादिगेताबो खनालायना तिनि तिहाय सालो पाति थांमानि गग्रक दाय तिनि पालाय जागै दंमानि सालो तिनिनि साल पालाय जाक मारकनि बिसिंगो तिनिनि साल इन्टारनेसनल चकलेट डे नैनाय पालाय जागो अबो पालाय जाक मानि हिंकाय मिल्टन एस हारसे बिनि आजाय मानि साल न सेलिब्रेट खालायनानि बागै दाय कोइनसाइड नि बागै ब पालाय जागो आबुनो कारिबो तिनि प्रोग्राम्स दे निब पालाय जागो तै पजिटिभ थिंकिं दे निब तिनि पालाय जागो तै तिनि हाय सालो पादै थांमारकनि बिसिङो दङ तिनि तिहाय सालनो दिल्ली ओ सिरिसके हायेकेबा मार मारखे बुंब्लास्ट माबाय खरक थामचि बरक थैमानि तिनि तिहाय सालन अबंखा 2008 अपातिमु पातिमानि आबुनो कारिब तिनि तिहाय सालन चीफ जास्टिस नैनाय साग्लाय जाकमानि हायेकेबा बसमाय तांमानि आदर्श सेन आनन्द इन्डियानि चीफ जास्टिस नैनाय ब तिनिहाय सालो समाय तांमानि अबनो कारिब तिनिहाय सालन काठमाडौ मालदीव न भारत रिजनल फुटबल फाइनाल बाताइमुङ मेचने भारत कपलाइंग मानी अबनो कारिब तिनि तिहाय सालो आसायनाय रकनि बिसिङ जों सायमानो तिनि महिमा चौधुरी बलिउड एक्ट्रेस टाइ मडेल बिनि आजायमानि साल आबनो कारिब इमान चक्रवर्ती बंका नेशनल फिल्म एवार्ड मानजा प्लेबैक सिंगर टाइ आर्टिस्ट नि बागै तै दङ मेजर रामस्वामी परमेश्वरार बिनितिनि आजायमानि साल बंका परमबीर चक्र रुजाकनाय इन्डिया आर्मिनि अफिसार खरक्सा अबनो कारिब तिनि तिहाय थैजानाय रकनि बिसिङ दङ जतीन्द्रनाथ दास बंखा खरक्सा फ्रीडम फाइटार दंमानि ब थियासाक जाया हायेकेबा अनसन ब दंमानि अनसन तंथानि दक्जिथाम सालनि यागुलो बिनि उमर आफ्रु 24 उमर ब लाहौर जेल थैजाखा आसुक जरा जों खोनालायगा पाति थांमानि कग्रक

आओ चिंता बुक खाना लाइन तीन तंगीति चं पुदीना खाईमानी ककीसा खाना लाइन पुदीना खा कई मतमते नांगमानी बीथी बुफांगी सिनी जागो पुदीना नक नि टब बारी एवं खेतरगो खलाई सासा खेन खलाई मानो पुदीना हजम खाईतानी गबायु गबायु हमरी थानी बुखक मुनामा खाखलाई थानी चिरी सकनो कस्रांगनी थानी

0: सुकंग्राइफ्रु बुदिनानि बाहाय बुकुं कुफुंमानि जोंजालनिया काग्रिथानि जोंनो बेलायखे चुबाव पुदिनाओ एन्टीअक्सिडेन्ट बतंगो ते अबचिनि शाकनि सेलनो अक्सिडेटिभ हामियानि मोथांथानि चुबाव पुदिना गायनानि जरा रखंखा अक्टोबरनि सिमि नभेम्बर ते फेब्रुवारिनि सिमि मार्च तालनि बिसिंग पुदिना गायमानि रायदा रखंखाहाय रफ रफ हा ते दै अंखरै थांनानि सेप गोनां हा पुदिनानि बागै गाहाम पुदिनानि बेदेक एबा काटिं हाव फबै रिखेन लाइटे साखे गोदाल बुफां बुसां रिफायो हा रानसामा नुखाहिनगे दै मारिनाय फिया नांमानि बारा दै गोजारि मानग्लाग ते अबनो सातुं नांथानि माकायथाय सार हिनके जैव सार एबा कम्पोस्ट रेखा हिनके पुदिना बुफां गाहामखे लगैफायनाय पुदिना तरखा हिनके नांफ्रुव बलायतै बसखलै जावैमानखा पुदिना दाक्तिनो हामियातै हसै थांगु हिनै बन गोजांतै किसि दंखर खातिवै दाक्ति दाक्तिनो हाथि मैखोदों फालनो हटेल तै रेस्टुरेन्ट रग रहरै रहरनानि सेबनाहारै रां पैसा आजिवैमानो हाइके जों तां बिदिवा सुख जरा पुदिना खानानते ककथासे थायनि खालायखा
1: आवफादिखे ताबुक साखामग्रानि कग सायमालायानो किडनिन गाहामखे तनानि कक किडनिंखा जों बर' रगनि साखनि गायस्या नांगुक मानि मानै किडनिंखा जिनि सागो थाखब्लायाखे सामुंख्लाय दंनाय मानै थैन साखेवै शाकनि मानै हामिया रग्न दिख्लाय रहर शाकनि दै सम तै मिनारेल रग्न बाक्साखे तनिव एबा बेलेन्स ख्लाय तन तै ब्लाड प्रेसार नब कन्ट्रोल खे तन फिया गायसा ककंखा किडनि देरामानि नुकमारि दाति नुकजागिया सालब्रुम ब्रुम चिनि चिकन चिकन लय हामिया एबा बेड हेबिट्स रग्न किडनि न देरारब किडनि साना थांखे किडनि किडनिनि मुंसा बेमार कतर गोरैहिनि मानो डक्टरक दागिमुं गोरैखे पेन किलार जामानि साल गोदोग रमै अमहाय बिथि रग जाखे सागो थै थांलायसुनि गिसाङै मानो डायबेटिस तै हाई ब्लाड प्रेसार सागो तंखेब किडनि हामिया ओंगै मानो आबुबाय किडनि रामप्राय देरावै मानो आबुनि बागै सुगार एबा डायबेटिस तै हाइ ब्लाड प्रेसार न कन्ट्रोल खे तनानि नांगौ आबुनो गारिब सम थगो सेरजाक मानै जामुं तै पेकेट जातनि जामुं फास्ट फुड जाखेब तै सागो तै नांमा जरा तै नंगिया हांखेब किडनि देराय मानो आबुनो गारिब फेकजाखनाय मानै नोंमानि हाइकाबा जुवाग रग नोंमानि तै साकन जों ब्याम खाया एक्सारसाइज रग खाया हांखेब जिनि किडनि देराय मानो किडनि रग देरामानि जों एक्सारसाइज रग गोरै हिंखाय बेलाय प्रेसार माजाव आबोबाय जिनि किडनि देराय मानो दा किडनि न गाहामखे तनानि हिंखाय जों रेगुलार पेन किलार रग जाया दंनानै नांनाय डायबेटिस तै ब्लाड प्रेसार रग न कन्ट्रल खे तनानि नांनाय सम गोबां जायाना नांनाय प्रसेस फुड हायखाबा फास्ट फुड पेकेट फुड जाया दंना नांनाय फेकजाखनाय मानै जाया नोंया दंनानै नांनाय तै सालो जे नांमासुख दै नोंनानै नांनाय दुइनि सिमि तिन चार लिटार जों दै नोंनानै नांनाय साकनि कलम दै खिग्लायै सामुं दांनानै हायखेबा वार्क एक्सारसाइज खालायनानै नांनाय तै ओबेसिटि नब कन्ट्रल खालायनानै नांनाय आसुग जारा सायमान लागा किडनि न गाहामखे तनानै कक्रक

0: ओरै थाङैबो बयनोबो दादाल सानानै लयै थांगौ
1: हे
0: दिबा गाबोननि बागै जेरै रकनब बिसि जेरै माबसाया जेरै रकन हाय परिफुरु माया खायनानै नांगौ दाफुरु नंफुरु माया खायनानै नांगौ स्कुल थांफुरुबो माया खायनानै नांगौ पियाबा बेरायफुरु हाय जेरै रकन बुखुबाय बुना नांगौ बुखुबाय सिखिरिनानै नांगौ हाय दिबा जेरै रकन तमुं नहाबो हायजे सिखिरिया जेरैनि सिमिन सिखिरिबैतुया हिखे ओ जेरै उलव बुमा बुखान यागदि सावैबु हाय दिबा
1: आहायन
0: जेरैनि हयतन जेरैन सिखिरिबैयागोन इतुनानै नांगौ दाबो कायसा कायसा आबो हायजे सिखिरिबैतुबा हिखे तरै कुसु कतरंगै थांमानि यागलब बुमा बुखानबो खिरि जाखिनाय दे बुइनाबो खिरि जाखिनाय गे जेरै रकन खिथ सिखिरिनानै नांगौ दाफुरु नंफुरु उसुल थांफुरु बरकम माया खायनानै नांगौ दे साथि तनि उइ दंखाहिगे अलखाय बुमा बुखानो गिरियाङै अ थांमानि यागल यागल बुव गे तातल खुरुङा तरै थांगै ब बुइनाब तातल थानानै लयिङै थांगौ ब
1: औ औ जों जेरै रकन दाबालाय खेना हामबाय हामबाय औ जों जेरै रकन अबाय खेन हामजाक मुंग्रोनानै नांगौ आदर खालायनानै नांगौ जे नों न' जिनि नांगौक माने बरक सोंजार नों न' बेलाय इम्पर्टेन्ट कुक अबाहै गायसा जों जेरै रकन अबायखे फुनुकनानै नांगौ अबाहै बनो फिल खालायरिनानै नांगौ अबाखे जों बनो दै दलनानै नांगौ हेंखाफोरो ब बनो इम्पर्टेन्ट हिवानसु कांखाय ब कायसा रेसपन्सिबिलिटि ब बिनि सागो वानसुक फायनाय बिनि सागो फायनाय ब आफुरखे जेफोरखौनो बरक दा बारजा रोजा खांखाय बारजा रोजा खांखाय आ बारजानो दै गिसाले ब मा वानसुगौ केपलें मांगौ गाबोनि बागै न' जों जेफोर जेरै रकन नों न' जिनि बेबाक न' नों न' जिनि इम्पर्टेन्ट बरक कुक नों न' गाहाम नों न' हामिया खालायनाय हिनि हमा हाय गे जों जेरै रकन अबाहायखेनो बनो जों इम्पर्टेन्ट होननानै नांगौ जों बनो अबाहायखेनो गिदिङै जों बनो दै दलनानै नांगौ आफोरखे ब बाहायनो ए आन' आसुक इम्पर्टेन्ट रुव आंबो रोनाय आनि आमा बाबो न' आनि बागैबो बेबाक न' नैने बिनि थानि आब' बुखुबाय सालायाफानो गायसा अबाहायखेनो ब' बरक ओंगै कलकतर ओंगौ दावसिनि दाखक एंगाल सामाहाय हा गिसि न' बादुल बसनामोन बरक बसनामोन गिसि दंफ्रु न' हा रकनोथ' जों पद्रे पद सेब्रैनो बन' तागै मानो जेरै रक बाहायन अबाहायनो जेरैफोरथ' ब' बिनि बोखा गोलै बिनि तमुं सामुं अबनो न' जों बन' गाहाम बरक गाहाम केरेक्टरनि बरक ओंगै सानामैदि सानानै अ जेराय फ्रुनि सिमिन' जों जेंनानै नांगौ तरै लगै हायखाबा जेरायनि सिमि बन' वाखाक सिखाखे कक हामियाबाय बन' बद्रे पद हामियाबाय स्राइमुंबाय नासिलामानि जलिमानि खरांबायखे जों जेराय रकन' होनानै सानानै गग्रै नायनाय नाहायनाय गगदो गसाबोथ' आव आबोनो जों जेराय रकन कक रोखा हांखे कक नारखनानै नांमानि आबो रकनि बिसिङाव जों साना थांखा हांखाय जों जेराय रकन कक जों नारख मानथत' गैया जों जेराय रक बुमा बुफाथ' सायमानै दङ गांखै जों बनो बुजगनानै नांगौ आजराव हांखे जों रिमायांनानै दंखा हांखाय इ इ होनियावै बाबा बा मा अबाहायसि हायसि पातिमुं अबाहायसि जों बेबाक न' बन' सानानै नांनाय द्रोग द्रोग अबाहायखे जों बेबाक जागावनो इ इ होनैनाय होनियावै जों बरकनि वान सुख मुंगौ जिनि कक्न' जों दानानै अबसो नांगौ अब' अबाहायनि बागै ओंया अब' अब' गाहाम अब' हामिया अब' जेरायनि सिमिन' बजबनानै जों नांगौ दाबो गोबां जामुं रग जेराय रग सानो जेता बिनि साखनि बागै हामिया हांखे जों आबोबो बन' बजगै सानानै नांनाय वाइसा बायसाय बुजियाफानो नों आबनोतै सामां दंखा हांखाय तै नों ब अबाहायखे दङै फुनुगै दंखा हांखाय आफोरखे जेराय ब बुजिनाय सायमानाय जामुं हामिया बबक जामुं गाहाम बब' फियाबा नों सावैले दंखा नंखे फॉलो खाया आ रूल्स रोनो हंगांके अबाय के चले

जों सालाय दंमानि दिनैनि बेजेब ठाकुरबारिनि देवी प्रगा सुन्दरिनि ककनतै सालाय दंमानि प्रगा सुन्दरिनि लांमानि पुइला आइकन चला अंका बिनि बुफा हेमेन्द्रनाथ ठाकुर बिनि लांमा हायकाबा बिनि बुफानि लांमा बिसि उमर बिसि ब्रैजिनि बिसुंगन बिनि लांमा पायथाक असंसार नब याक्रै थांगा आबनि यागुलब प्रगा सुन्दरी बखा थै जागिया बखानकरा खेतंगु बरक बेबागै दाखौ बुखौ खायकेबा आसायसं खरक जिसा आबरकनि बिसुंग बसिमिन कायजाखु बकायजाकमानि ओंखा बेरिस्टार आशुतोष चौधरीबाय कायजाकमानि बिनि बुमा बसाय थैजाके वानामानि बाय मुख्रै थांजाग्या बसा आसिक गोबां मानो बसिनानै बरक गाहाम सय बरक सोनामै दिसानानै बेलायखेना वानामा हाबजाग आजराव फियाबा देवी प्रगा सुन्दरी बुमानो बेलायखे लगिरो तै

0: जेराय रंनि बान्दाबो खरि बदल बान्दा न खनाना हेनै रेदु गाना आसुक तंनाय खाजानि दाखुकते बुखुक संनो पुइलानो आनि खापांनि हामजाक माते सिबाया फरै तिनिनि बान्दा न अरन चेंगु हेंकाय तिनि न रक जतन फाइबे खेना बान्दानि पुइलानो छेंग खरक्सा ते खरक्सा काय सिनिमानि बिसिंतै छेंग तिनि सिनि बान्दा न चेंलायनाय काय उ यांगो आसुक तंनाय काली रंग सुमजाक निन बुमखाय
1: बाहाय
2: जों पार
0: खेरे सा मुसिन पांदा नै गाय दखनाथ खायनो पांदा न जेंलाय ला।

आसिक जोरा खनाबाइखा सराइरकनि पान्दा बोख्रि बदल ते बरकंखा चालिता बारिनि तेव पान्दानो कमथिंनायखा भुपेस देवबर्मा आकाशवाणी आगरतला बिनि आगोल ताबु खनाबादि खानिमारि पान्दा खानिमारि पान्दाव खनाबादि दिलीप देवबर्मानि खरां बाहिर जाबजाक रेचामंग्रक तेव पान्दानो कमथिंनायखा

कपाल हामियानि बागैसे बसं कायसेवो राजा खरंनै ओंनानै नांगौ हारम्बो राजा मु तिब्रान राजा सारमां ककता दाबो साका जोंबा ताखुबाय ताखुसे क्लायलायो आपतिखे ताखुनै सालबोसोकते कागै दंलायसिनाय फियाबा जिनि बिसिंग काग्लायमुं केबेंलायमुं आपतिरकुरै आपति नुखाय जिनि बागै बुसुबुसानाय रक बेबांनो किरिजाक बायनो तमुनो केबेमुं कसमुं तंलायखैता हंकायतो किरिजाक बायग्ला केबेमुं कसमुं कुरै हंकाय बुइतो किरिजाक बायनो ताखुनै तमुं थानसा हंगायबा हेरमो राजा बाय तिपरा राजा तो हंकायनो से थै करोंलायो बसं कासेन बरक से हिनि मानो जों खरंनिनो तंथकचा तखै राजंगै राज्य बाग बुखलायै तंलायेनो अक हेरमो राजा साकाता हेरमो राजानि अप्ति क काम खनाबै तिपरा राजा माने शुक्ररायनि बसाजला जे राजाउनाय प्रति आबो बेलायके हामजाखा बहनका आता एबा ताखु ताखु अकरा अक साका आबोसि कक आपति खे चिनि कक तलांगै हेरमोनि बुबाग्रा दं थाङै पैख्या बिनि बुखुंनि कक तलांगैता हेरमोनि बुबाग्रा जा दं बो थाङै पैख्या आबोनि यागुल तिप्रा राजा ताखु अकरा बाय मालायना थांग ताखु अकरा माने हेरमोय मालायना थांगाता राजा खरंनि गोबांमा कक कोथै कोथै सालायै खरकसान ते खरकसा बोखाबायन लामजाक सगलायख्या खरंनो नै गोरोंसाव आसुगै माया खरकसा लायख्या हा करंगनि दि कनि कसार आरिब बलायख्या गजां ततखे राज्यनि सामुं तांगै तंलायनानि कक बो जाबलाय आहैखैयै ताखु बाय ताखु कक सालामै हायखैन हारम्ब राजाबाय त्रिपुरानि राजा बरक कक जाबलायख्या ताखुनै थानजाक आसुलायै जरा कैसेसे गफान केबुनि आरि केबो बारिया अक बो जाबलायख्या दैसि अबति सुमाय गराग बरक तांलायख्या जरानि फेरक लायै तखफान कुपुरनि थांथुन हाइफान बर केबुनि आरि केबो बारग्लाक अबति कक वक ब्रक समाय तांलायख्या अबोबो सालायख्या नों बायां समाय कत तांलायमानि तमुंन नारक जायगा हनखे एबा समाय सोबाय खिबि जाखाय जिनि बसं कमलि थांथुन थै थैकुमै थांबायथुन आपतै किरिमा सिंजा समायर बरक तांलायख्या बाय त्रिपुरानि राजा गोथालायमानि कक कक साबलायमानि कक समाय तांलायमानि कक औ कक र गुबुनि हा बुबाग्रानि राजा रक खानाबायख्या आपको खनावी बरक वाना कतर वाना जागलायख्या हेरम्बनि राजानि पूब उत्तर गलाव तंनाय तंग कामाख्या माने आ उत्तर गलाव तंगै तंता कामाख्या जयन्ती आकरनि हाबु बाग्रा रक बरक अक्क खनावै कक बिदि थाइजे खलायख्या तांगि हिमबा हेरम्ब राजाबाय त्रिपुरानि राजा कथालाय तंथुन आबो बरं नाइया कथालाय तंलियाखाय ब्रक दुर कंनाय केबेलुंनाय कथालाय तंखाय ब्रक करागुंनाय आमुन बागिनो ब्रक अमन बाहिके कातिरिमान आउन बाय कक बीती कैसे थन लैके कक बीती खलजाक मतिन जे कक बीती जेती के खलजाक हसा आप तिखेन बरक बरु निथानी बरी नाइथमा कैसे रिविड हरका और राजा खरुनि निकनि के सारता आ जराव बुबागरा खरुनि ब करंगसाव आसुगै तंलाइमा जरा आ जराव न बरक आ बरी नाइथमान मकल क्लाइजाक लाइता बरी मा थांगा मकल बंग मकल क्लाइखा बरी गुबुनि राजा रक आ नाइथकजों न फनगै रिहरमानि तंगु फियाबा तामनि फरंग रहका नों तिप्रा राजानि बखागन मकलनि मुसिं पुसु बाय नासिक नासिक दि आ बरिन साइर होगाता बरक हेनमो राजानि बखाग मकल काई ता नासिक दि तिप्रा राजानि फाइसिं सिमिन काम काय मकल काई काई फिदि तिप्रा राजा प्रति सागमांग दुलगनां माने चला नायथकता चला नायथक चला काहाम गद मद कासे साग बाय मांग बाय नुखाय नों सिवान बबसुक जराती नायथक हेनमोनि राजा अमर रामाबाय आकमाबाय खालगै बरैनि बखाग नाइसिक ग्लाक गुबुनि बगारा रग बाय गोरोंगै फोरोंगै रहजामतैन बरंनि दागि मुंग्रगै आ नाइथकजों ब सामुं तांगो कंखा गुबुनि बुबाग्रा रग सामतैन अ बरै सामुं तांगन चेंखाता ताबु बरक सागा तिब्रा राजान बखागसिम नासिक दि ओ हेरम्ब राजान ता नासिक दि बंखा अमर राखा बुरांखा आ कग्रकता बरैनुगै हेरम्ब राजा बेबागन पगजागै थांबायो बनसे बुरांखा न अमरखान बसि बेबाग पगजागै थांबायखा खातें खाजा खालायै नुंमा बाय बाक्सान ब बुबाग्रा आ दं न कंखा बिनि जा दं ता बिनि उंगै जे कक सानाय बन सिंग आनि बागै सोबा अ नाइथुजिनो रिहरखा साब रिहरखा जा नाइथुजिनो बखाय बनि बागैसे रहर जाति मातंसु फियाबा आ नाइथुजि बन ना नासि गिया तिब्रा बुबाग्रा न से हामजागु हामजा मु याफार याफार जि ब्लासा बन याफार याय हेरम्ब राजा आबागैन लासि जाखा ते जब जलि जाखा ब जलि जागै मकल नुग यं तंखा आको

और समूह साबोबाई रे सब्जा रे समूह पाइथक रे समूह। हेलो हेलो हेलो और समूह साबोबाई रे सब्जा रे समूह बेले हम बनी नहीं सिनुमो बेले हम भाई ताकुनो अब हिरोन दे ब्रह्मा भाई रे सब्जा सबुंगनो अब उन लोगों ने पक्का तीन ही खाना तो खरंग पंडा फाइने ये पंडा होते हैं उसे नरक भाई खाना तो ग्रह सामुंग रोकती फाइने कोको सरी तीन बागे आर सिंग नोंग सिद्धं और अन बासे सिने आसुक जोरन नरक चीन लोगी तो मम बागे पाइपलाइन भाई जो तो नो क्लुंगा कहाँ तुम्हें

0: बरुने चाकरी चाकरी खलाया पुरी से तंगो नेखे बो कॉलेज लगो पुरी खला
1: आंखे उमेन कॉलेज से पुरी वो दा आंखे बो कॉलेज पुरी ला
0: आंखे मिवे कॉलेज से पुरी वो
1: गे दा छोड़ बसे थाला की वांटा
0: दा
1: आन बारा उत्ती कर खाई जिनी दा
0: नहीं या दा
1: एरिस्का दारा इधर रहें थाला की वाने
0: एरिस
1: अलाम कॉलेज में मिले
0: एरिस्का बता करा दे नंगारो नफर काबा और कर लिखे तो नंग बाय
1: जरा यंग से थाले छोड़ बंदी ना आन बारा तिया थाई छंग बजे नंग बाय छंग दोंगो
0: दा कॉटन समय रखो फाइनल
1: थारे जाता बाजी पुर फाइटा
0: अच्छा फाइनल
1: बाय बाय
0: टाटा
2: आसुस कक्तुन दहमानी बाबुजरा कंखे कक्तुन फनो तरमया नंग मानो पुगी थंग रेखा नंग मानो पुगी थंग का नखा पिलाला सामपरि तोला नंग मैचिन कनरि समय तंगमानी सिन समय नबा नंग पुगी थंग रेखा सिन समय नबा नंग पुगी थंग का

0: मग सांगा अन कलसपांचे कोकतून होतो रेलिया
1: तामो किचा बोनी बुखो किचा खाना माने निने कोकतून नो बसवा जाओ से काफी तो नहीं खाना बुले
0: अन कोकतून सुबा जाओ काफी तो नो
1: ए
0: मग कोक ना घरा खाना सुंगे कुबई कुबई नहीं छे मैं के बो है सुबा बाबू नो छे मान बनो डे गाड़ी संग बनो वसन जन वसन उठो रह छे नाई
2: ए जा तुम ठगरा दे
0: ओ सफले सफले ए रिक्शा ठगरा दे
1: हाय सफले नु बुपुर सपा
2: अन तामन काबिनी भाइयो
0: कामिनी खबर रखे भाई छपली काम करूं तुम ने बोलना
2: तो सागर दारा कामिनी खबर रख बोले हम या
1: हाय तब खबर छपली
2: उस गंगा थाने लाल बाजी ना सुबह जाओ बाजी रखा कर तला फाले पुन तीनी दबे बार हाथी बसे से उनको चौंका तब वो दबे छपा यही नहीं दिन बुफा तीनी पुकार सही हरो
1: हाय अब तो मैं निको निन मुको किस है तो दे छपले
2: सतोनो दा तोरो
1: नुखा दे आंग सामने को कलो बाबू नुखा
0: तोरन बाबू सगन कमी थंग फाइने कोगबा कामी सिंह थंग फाइने लेंता
2: दालोग बिन बफागा आनो किजा खुश करे बुदिन थाय रहल ब्ले
0: अरे बाजी जेबरी आनो खिबिसे कुमनितला बैठा हंका अंगन दतु कि तहिनला
1: और अलग बाबू हिंदे खुद खलाई माने गरे नाय खना सरपंच नुगा थांगले मानो
0: दा कसिन जा कसे पले नु नहीं फरेश भाई का
2: भले
1: अरे सा सुनो राजदार बिच संते ते हिंदे
0: तोर नबरी से बिच किजा बिठाई करे ओ राजदार बिच कन काम बुरी मसा तु दंग नु मखा
1: अरे सा बता कर दे बता कर दे
2: ओ रे कसे ब्ले दालो
0: देखा रखे नंगर बफुन जिम्मेदारी के सपाई चाम नंगर भाई मेरी से कहते रेखा नंगर बुफुन तिने सोपे रेखा न बुफुन तिने रो सोपे आ
2: आ न रो सोपे क्या ओ ओ अंसी बंसी लिया डालो डालो अंसी बंसी लिया तिने सुमाइनो
0: खाया भाई करेंगे गांव करेंगे चुनाव क्षेत्र में रेखा अभी कौन नहीं तो सुने।

आसिक जरा खनाबाई क्या जुलाई देवबर्मानी खरंगबाई रिजाब जग रिजाब मंगरक आकाशवाणी आगरतला अबुने लगिन पाइख्या चिनी तिनी शारिक जरानी कपुरक आवे पांदा हम बाई ते खुलम बाई क्या

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और

0: भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र।

0: त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई परिवर्तन किए हैं।
5: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा,

0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताज़ा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
1: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।